किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

0: music
1: pumps you up.
0: Your station.
1: So good.
0: Lotus FM. Lotus FM. The Night Cafe on Lotus FM.
2: उठाई दिन न जवानी नड़े चली।

पतंग संग उड़ गया बचपन, छनक छनक मन टगर सुहानी रे। लड़कपन आया अब तो कसक मसके क्या मस्तानी रे, अरे क्या हाय जवानी की होती है यही निशानी रे।

0: मटन, अरे मथुरा के पेड़े, रेवड़ी मेरठ वाली चाट तरीबा की लाएगा। अरे मैं हुक्म करूँ तो दूर अरब से पूरा बाग खजूर लाद के आंगन में भरपूर तू मेरे लगवाएगा।
1: अरे लगवाऊं।